0: መዓር እናተጠቕመ የፃውቶን ይሽልሞን።
1: हमको मालूम नहीं था तुम इसको अच्छा पता है बोल के। अब इसे दिल्ली मिल जाएगा, राइट?
0: ቀስበቀስ ድማ ኣብ መንጎኦም ዘሎ እምነት ክብርኺ ተራእዩ
1: ዳርቱ ራ